ओके, अमृत वेला है तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो, स्नान भी हो गया।

लक्षण आशा जी दीवार लगा के कीर्तन समाप्ति उसपरंत अरदास गुरु के हुक्म नामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आई दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ए भी गुरु दी प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो भी बेनती की थी सी कई प्रेमी कहने लगे पाही जी साडा भी सब आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना ले लो ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आशा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आशा राग विच आशा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आशा जी की वार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्वासा पूर्णी आशा जी की वार तो ये छंद आप आशा राग च लगा

0: प्रकाश चंद्र जी सेवक इथे आए हैं, संगतान अत्यंत प्यार नाल ज्ञानी बलदेव सिंह जी मेरे बरखुरदार भी हैं, ज्ञानी भी हैं, महापुरुष भी हैं, क्योंकि गुरु घर की सेवा जो करते हैं। इन्होंने भी बड़ा प्यार किया है, करना बनता भी है, क्यों ए बाबा जी दे संगी फिर निकटवर्ती संगी हैं, तो बड़ा प्यार किया है। मैं अरदास करदा हाँ गुरु इन्हों चढ़दियां कलां आप जी की सेवा विच इन्हों पूरा माण गुरु बख्शे। तो अज भी जो चाह का प्रोग्राम है ज्ञानी जी ने काफ़ी सहयोग दिता है, तो ये भी इन्हों का प्यार है। हुण अरदास होगी तो मैं बेनती करांगा भी गुरु साहब अपने सुख स्थान पर पहुँचा के तो कोई भी माई भाई जान बुझे चंदा करे, सारे ने सेवकों की यह सेवा प्रवान करनी आस करदा हाँ, बेनती प्रवान करोगे। आओ हम अरदास भी जुड़ो।
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अपराधी दुणा ने वे जो हुता मेरे का ऐसी स्थिति वाया क्या थी जारी देख सुते जाए मुला पहला।

तेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अर पाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

सा मेरो मित्र सखाई। खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभा शीला, खालसा बंद सखा सद डीला। खालसा मेरी जात अर पत, खालसा मेरी जात अर पत, खालसा सो मां को उत्पत, खालसा मेरो पवन भंडारा। खालसा मेरो पवन भंडारा, खालसे कर

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथ्या पाकी पार।

0: कृपा निदान जल्द पूरो
1: करुणा ले
0: और कर ले है खल खंडन है न मंडन है जगत।

बड़े प्यार नाल सरवण करो। ये जो आप जी नूं मैं सरवण करवा रहा अज उस दिन असी गुरमुख प्यारे सरदार जगजीवन सिंह जी सानू नाल लैके गए और सब लोगों नूं वेख के जिहड़े धर्म का इजहार कर रहे सन अपने अपने तरीके नाल और मैं भी उन्हां च क्या भाई दुनिया विच काफी लोग हैं जिहड़े बिल्कुल किसी गल नूं मनदे ने और जिहड़े तुसी मनण वाले हो उही साडा परिवार है भावें तुसी किहड़े धर्म तों बिलोंग करदे हो। उसे तरह ही तुसी गुरु के प्यार वाले सिख जिहड़े आ गुरु नूं अपनी हाजरी लवांदे हो और मेरे कीर्तनीय वीर मेरे सामने बैठे हुए हैं गुरु कृपा करे इन्हां नूं चढ़दियां कला बख्शे। इस तरह ही गुरु घर का संदेश दूर दूर तक पहुंचाते रहन। श्रवण करो ये पानमती ये मत ताल है ये पानमती ताल है और गुजरी कबीर साहब की गुजरी राग भी गुजरी है और आप गुजरी सुनो गुजरी विच ही श्रवण करो इसनों और इस जो इसका ताल है वह 11 मात्र है पानमती ताल।

कबीर साहब कहंदे ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब दा नाम है लिखिया होया है अपने हिरदे ते। किड्डी वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम रब

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

0: मन नरहर नरहर स्वामी नरहर स्वामी।
1: राग भैरवी है, भैरवी ठाठ में उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है। वादी संवादी कुछ लोग मां ते सामन दे ते कई धात गंधार नु वादी संवादी मन दे, लेकिन ये गाण दे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाले जी कोई होगी वादी संवादी, भावे मां सावे भावे धात गावे।

हाँ क्या सलाही किरवजन। हे मेरे साईं, ए जीव तेरी की उपमा कर सकता है। मच्छी की जाने के सागर केडा वड्डा है, पंछी की जाने के आकाश केडा वड्डा है। हाँ क्या सलाही किरवजन, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई, मैं तुझ में बेली कौन। ए गरीब नवाज, मेरा तो आसरा ही तू है, मेरे जीवन का सहारा ही तू। मेहरबान साई मेरे रब्बी दाता, बचपन खेल कूद विच गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप दा पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तां बढ़ेपा आ गया। ए मेरे दाता, हुण तां कंबी दा बरूटड़ा, हां पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता, मैनू दर्शन दे। दर्शना दी दात पे मंगदा है कौन, प्यारी सासंग राय बुलार आखो श्री वाह। ओ राय बुलार, राय पवे तलवंडी दा मालिक, पहली वेरी गुरु नानक नु वेख्या, गुरु नानक जोगा हो गया, अज रो रहे है बार खूह ते बैठा है। नौकर ने चौकी बिछाई है, उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पिया करता है। हे मेरे दाता, आ मैनु दर्शन दे। अखां चो अथरू डिगदे, चिट्टे दुध वर्गे दारे ते आखे पैंदे, मानो सुचे मोती जड़े हन प्यार दे। रोंदे अखां दियां सिपियां चो प्यार दे सोची सुचे मोती डुल रहे, ते अरदास करदा कि आवा पावी करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राय बुलार बेनती कर रहे है, हे निरंकार धन गुरु नानक सतेव पातशाह, 12 सालां दा विछोड़ा किवे सहारिया जा सकता है। आओ दर्शन दे, अखां वस रहियां हन ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक बोले।

अरे दात मंगो अज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रा च विसाओ हिरदे ते विसाओ अज राज बुलार अरदास पिया कर रहा है आओ जिसने धरती नु पुटे ओनु पानी जरूर मिलिया जिसने खोजिया ओनु मालिक लभा है जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए सारी आओ प्यारी साध संगत अज दा समा ए रात खास बख्शिश वाली है की पता हो जाए बख्शिश कोई वड्डी गल नहीं तो आओ तरला तो करो उद्दम तो करो ओ केड़ा उद्दम है अपने मालिक अगे अरदास सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नू बख्शी है अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़ जाना है राय बुलार रो

पिताजी मेरे ननकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

की कहती है, जहां भी जा निकलता हूँ यही कहती मुझे खलकती, वो देखो आया दीवाना।

बेकार आई। अगे हकीकत के माता तृप्ता बेसुध पई। बेबे ने आके प्यार नाल मां नूं आवाज दिती। माता तृप्ता ने नेत्र खोले की तकिया, नानक दे प्यारे जुड़ी बैठी सा, पर नानक दी भैण आ गई है। सत्कार की नानकी कोई अपने वीर दी सोच ना। वेखना एक साल ने, दो ने, बारह साल निरंकार ने वडेरी अवस्था विच इको पुत्र दिता, ते ओ भी बारह साल तो विछड़े है। बारह साल का विछोड़ा जिस मां नूं इकलौते पुत्र दा मिल गया होवे, उस मां दे दिल कोलों पुछो। वेखना नानकी पूर्व माशी आई, मैं इंतजार कीती आवेगा मेरा लाल। पूर्णमासी लंघ गई, गुरु नानक आए। फिर मैं अपने हथी सूत्र कत्या, कपड़ा बुना के कट के चोला तैयार कीता। आवेगा नानक ओदे गल विच पावांगी। पूर्णमासी लंघी, चोला उसे तरह पे है। एक नहीं दो नहीं नानकी, बारह चोले तैयार होए पे। पर चोले तैयार हन, चोले पावा नहीं आउंदा। नानकी तू अरदास कर, तेरे नाल बड़ा प्यार करदा सी मेरा लाल। माता दी हालत नूं वेख के प्यारी साध संगत बेबे नानकी दी अखां वी बस पई। फिर रो के कर दीए अरदास। केड़ी अरदास जेड़ी राय बुलार पिया करदा है, आओ आपां वी करिए।

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दिया कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुके मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उडिया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सच्चे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह? अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेबे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गईयां न पुराने आरती, तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विन दी चीजा परोम दीए, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, और सीने विन भी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालों तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 सालों तो बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की

0: रूप भीत बनाई रच पर रहत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्जो कहां दवा
1: अनु समझ लस बिगड़ो ना हरि अनु समझ

किस पे आप सुनाइए कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे खाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

कूड़ मर जा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ पार।

दारू सुखरो पै जा सुता न हो तू करदा करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया।

खत्री शब्द शुद्ध शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जो जाने पियो नानक दास है सोई नन्न दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ते आत्मा आत्मा बस

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सदल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

0: अर्धगुप्तं प्रेषतो
1: यक
0: अर्धगुप्तं प्रेषतो दर्गोष गुणकर्ता।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म धृग तांग दागड़ी दिम दिरना बागड़ी ब्रिकते बांग तागड़ी तोम तोम तोम तिरना दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगानी कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल जे तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ ताल ते स्वर का मिलाप करके की।

0: अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नत्ते कौआ हंस होवे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर न बढ़ाया सब लाथे किल वेख पंग
1: सतगुर

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

बिसर गई सब तात जब ते साधु संगत मोह रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन ज्वाइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa. Bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you. The noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas

राग टोडी विच आप जी शब्द सरण करोगे। पंचम पातशाह जी रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस राग विच शब्द दर्ज है उसे विच आप जी इस सरवण करोगे।